महबूब की मेहंदी फिल्म का गाना मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ें, शब्दकार आनंद बख्शी, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और फरमाइश भेजी आप सभी श्रोताओं ने संतोष मिरजकर पुणे महाराष्ट्र से और अमित खातरकर, निहारिका शिवपाल यादव, अनामिका अवंतिका, शिवालिका पारस मणिवाग, पंजाब राव और संदीप पाटिल ने फरमाइश भेजी थी सारथी जिला बैतूल से। इसी गाने के लिए फरमाइश आई थी सतीश पिगलानी, सीमा अनमोल, धर्मपाल, वीर सिंह लाखी, लखविंदर सिंह संधू, महावीर संधू और इनका पूरा परिवार मालोट कैंप पंजाब से, माधव नामदेव, सीमा नामदेव जबलपुर मध्य प्रदेश से, देवशंकर तामूरिया, अजय देव, तुषार देव, डॉली बेबी, पूजा, राधिका, प्रभा देवी और इनके पूरे परिवार की ओर से फरमाइश आई थी बालोद छत्तीसगढ़ से। चलिए अब सुनते हैं अगला गीत, ये फिल्म याराना, किशोर कुमार की आवाज़ है।

याराना फिल्म का गाना आप सुन रहे थे, किशोर कुमार की आवाज में अनजान के बोल थे, राजेश रोशन का संगीत था। और पसंद करने वाले हमारे श्रोता खुर्सीपार भिलाई छत्तीसगढ़ से सतीश चौहान, शिवम और निर्मला चौहान, और पप्पू राजा खुशदिल, संगीता जिंदल, हंसमुख जिंदल, इन्होंने फरमाइश भेजी है चकला बाजार सामना से। और ये फरमाइश आई है हिंगोली महाराष्ट्र से, शाहजी बोडखे, नंदा बोडखे, हनुमान उत्तम और इनके परिवार के अन्य लोग, जाखूद राजस्थान से पूजा खटक, निर्मला देवी, शंभू दयाल खटक और इनके मित्रगण, वीर शहर से रणजीत कुमार नामदेव, शोरात रितेश, आकाश रश्मि, रंजना और गबरू। और फरमाइश आई है, इन्होंने नाम भेजे हैं जयराम पाटिल, मंजू, बालीराम पाटिल, शरीफा, नेहा, संध्या, गोलू, तनिष्का, रावी, देवांश और इनके पूरे परिवार की ओर से फरमाइश आई है इंदौर से। चलिए अब सुनते हैं अगला गीत ये।

लता मंगेशकर की आवाज में ये था आंखें फिल्म का गाना, रचना थी साहिल लुधियानवी की, संगीतकार थे रवि। और पसंद करने वाले हमारे श्रोता कापसी रोड अकोला से संतोष राव बाकड़े, ज्योति ताई, पवन कुमार और इनका पूरा परिवार, बिलासपुर से बागमारे परिवार, और फरमाइश आई थी गंडई पंडरिया से पवन कुमार सेन, प्रभा देवी सेन, रविंद्र रौनक सेन की ओर से, हिवरखेड़ से वासुदेव वाघ, लक्ष्मीबाई वाघ, संजय, ज्योति, आनंदी और इनके परिजन, बेरडी से हुकुम करमकर, सुनीता करमकर, हार्दिक, प्राची और तनु।

किशोर कुमार की आवाज में आप सुन रहे थे मजरूह सुल्तानपुरी का लिखा गाना, संगीत राहुल देव बर्मन का और फिल्म थी अनामिका। फरमाइश करने वाले हमारे श्रोता गांव उगाला जिला अंबाला हरियाणा से राजेंद्र कुमार, मलकीत कौर, आरती रानी, राघव और इनका पूरा परिवार, और कनेरा मोहल्ला पटियाला से मुकेश बर्ता, नीलम बर्ता, नीतन, नितिन, पलक, कर्ण, गीतू, निहारिका और हार्दिक। और फरमाइश आई थी हमारे इन श्रोताओं की ओर से शैलेंद्र पाटिल, शांताबाई पाटिल, सिद्धि, सृष्टि और इनका पूरा परिवार, शिंदे चौक सोलापुर महाराष्ट्र से। छत्तीसगढ़ देवरी भाटापारा से फरमाइश आई गन्नूलाल रजक, KRS, अश्विनी कुमार और गणेश राव की ओर से। औरंगाबाद से राजेश साबले पाटिल, शीतल राजेश, राजदीप राजेश, राशि राजेश।

सावन को आने दो इस फिल्म का गाना आप सुन रहे थे यशोदास की आवाज में, संगीतकार राजकमल थे और फरमाइश करने वाले हमारे श्रोता गुरुमीत सिंह तंगौरी, जसवीर कौर और इनका पूरा परिवार ग्राम तंगौरी से फरमाइश आई थी। नारायण प्रसाद वर्मा, मयंक जीत वर्मा, चंद्रकांत वर्मा, पुष्पांजलि वर्मा की ओर से फरमाइश आई थी नवगढ़ कटई जिला बेमेतरा छत्तीसगढ़ से। रविंद्र गद्रे, सुभाष गद्रे, दिगंबर गद्रे, राजेश गद्रे और सृष्टि की ओर से फरमाइश आई बरगी नगर जबलपुर से। और इसी गाने के लिए फरमाइश आई थी अहिल्या नगर से के जैन और रंजीता की ओर से। चलिए अब सुनते हैं अगला गीत, ये प्रोग्राम का आखिरी गाना।

0: बेमिसाल फिल्म का गाना था, लता मंगेशकर की आवाज, आनंद बख्शी के बोल, राहुल देव बर्मन की तर्ज। फरमाइश करने वाले हमारे श्रोता बहरामपुर खरगोन मध्य प्रदेश से तिलोक चंद्र वर्मा, श्रीमती भागवत वर्मा, अभिषेक, अमित वर्मा और इनका पूरा परिवार, और साथ में ईशिका वर्मा, अंजलि, श्वेता वर्मा का भी नाम है। गोवर्धन जिला वाशिम से रविंद्र पवार, मीना पवार, श्रीकांत और इनके अन्य साथी। शिक्षक नगर दुर्ग छत्तीसगढ़ से राकेश वर्मा, सचिन, रानी और इनके परिजन। और जिला नांदेड़ हिम्मत नगर से ये फरमाइश आई है, वाशीनाथ ये उलकर, बबीता, अनिष्का, तन्मय और इनके अन्य साथियों की ओर से फरमाइश आई है। और गुलबदन, गुरुदर्शन, सुनीता, शम्मी, रजनी, आकाशदीप, अनहद और इनके साथियों की ओर से फरमाइश आई है, जिला तरन तारण पंजाब से। इसी के साथ आज का मन चाहे गीत कार्यक्रम समाप्त होता है। चलने से पहले आपको बताते हैं, इस कार्यक्रम की प्रोड्यूसर तेजश्री कामले। अब अपनी रेडियो सखी ममता सिंह को दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: यह है विविध भारती।
2: नाट्य तरंग, श्रोताओं, नाट्य तरंग में आज आपको सुनवाते हैं सुरेंद्र गुलाटी का लिखा नाटक प्लास्टिक की घास। आज आप सुनेंगे इस नाटक का पहला भाग। निर्देशक हैं दीनानाथ।

0: नई दिल्ली 17 जून। मौसम बिल्कुल नॉर्मल यानी बेहद गर्म और खुश्क। सूरज अपने सही वक्त पर यानी 5:23 पर तुलू हुआ और इस वक्त यानी सुबह के 8:59 पर पूरे आबोताब से रोशन है। लोधी रोड के सरकारी क्वार्टर F2 15/614 के बाहर श्री HP शर्मा के नाम की छोटी सी नेम प्लेट को मामूल के मुताबिक मिसेस शर्मा साफ कर रही हैं। बाहर कमरे में 1930 के मॉडल का क्लॉक अपने मामूल के मुताबिक टिक टिक टिक टिक चल रहा है और जैसे ही क्लॉक की बड़ी सुई 12 के डिजिट तक पहुंचती है क्लॉक अपने मामूल के मुताबिक 9 बजने का ऐलान करता है और इसके साथ ही शर्मा जी अंगड़ाई लेकर उठ खड़े होते हैं। ना, शर्मा जी उन लोगों में से नहीं जो 9 बजे तक पड़े पड़े सोते रहते हैं और अपनी जिंदगी का कीमती वक्त जाया करते हैं। शर्मा जी तमाम जिंदगी बाकायदा सुबह 5:30 उठते रहे, स्नान आदि से फारिग होकर बाकायदा सुबह की सैर के लिए निकलते हैं, पूजा पाठ करने के बाद नाश्ता करते हैं और फिर ठीक 8 बजे सिर्फ घंटा भर के लिए छोटी सी झपकी लेते हैं ताकि ताजा दम होकर दफ्तर पहुंचे। उनका कहना है,
1: दफ्तर में ऊँघने वाले लोगों से मुझे सख्त नफरत है।
0: अंगड़ाई लेकर उठ चुकने के बाद रोजाना के मामूल के मुताबिक तौलिया लेकर शर्मा जी बाथरूम में घुसते हैं और मिसेस शर्मा रसोई में। शर्मा जी बाथरूम से बाहर निकलकर साथ वाले बेडरूम में झांकते हैं। बड़ा लड़का किशन या कृष्ण कुमार बुशर्ट और खाकी पैंट पहने अखबार पढ़ रहा है। उनकी लड़की उषा शर्मा मामूली सी सूती साड़ी पहने किसी गाइड में से कॉपी पर नोट्स लिख रही है। उससे छोटा बेटा विनय कॉलेज जाने के लिए अपनी किताबें इकट्ठी कर रहा है। यानी शर्मा जी को शिकायत का कोई मौका नहीं, सब कुछ ठीक है। वो बाहर के कमरे की तरफ पढ़ते हैं। एन उसी वक्त मिसेस शर्मा खाने का डिब्बा शर्मा जी को थमा देती हैं, जिसे शर्मा जी अपने थैले में डाल थैला साइकिल के हैंडल पर टांग देते हैं। साइकिल की गद्दी के नीचे से छोटा सा कपड़ा निकालकर गद्दी और हैंडल साफ करते हैं। पहियों की हवा और ब्रेक चेक करने के बाद जैसे ही साइकिल की घंटी पर उनका हाथ पहुंचता है क्लॉक 9:15 का ऐलान करता है। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल है। पिछले 25 वर्षों से वो सदा ऐसा ही करते आ रहे हैं। उनका कहना है,
1: चलने से पहले साइकिल के ब्रेक्स और घंटी जरूर चेक कर लेनी चाहिए। सेफ्टी से
0: घर से दफ्तर का रास्ता सिर्फ 20 मिनट का है, इसलिए वो दफ्तर हमेशा 9:35 पर पहुंचते हैं। यानी दफ्तर शुरू होने के 5 मिनट बाद। वक्त से पहले या ऐन वक्त पर दफ्तर पहुंचने वालों के बारे में शर्मा जी का कहना है,
1: सिर्फ 3 किस्म के लोग दफ्तर में वक्त से पहले पहुंचते हैं। एक वो जो अपने अफसरों की खुशामदी है, ताकि अफसरों के आने पर उठकर उन्हें गुड मॉर्निंग सर कह सके। दूसरे वो जिनकी घरेलू जिंदगी इतनी नाखुशगवार है कि नाश्ता दफ्तर में आकर करते हैं। तीसरे वो जो दूसरों की मेजों से स्टेशनरी चुराते हैं और दूसरी हेरा फेरियां करते हैं।
0: चुनाचे आज भी अपने उसूल और मामूल के मुताबिक श्री HP शर्मा दफ्तर के लिए रवाना हुए। उनके रवाना होते ही रोजाना के मामूल के मुताबिक मिसेस शर्मा बाहरी कमरे में आकर लेट गई। मिस उषा शर्मा ने झटपट साड़ी उतारी और लो कट स्लीव लेस फड़कदार कुर्ता पजामा पहना। कृष्ण कुमार ने अखबार फेंका, जेब में सिगरेट माचिस डाली और घर के बाहर। विनय ने अलमारी से नीली जीन्स और आई लव यू वाली टॉप निकाल सीटी बजाते हुए बाल संवारने शुरू कर दिए। 17 जून का दिन सब के लिए बिल्कुल नॉर्मल था। सब कुछ बिल्कुल वैसे हो रहा था जैसा कि सदा से होता चला आया है। इंसान गुजरते वक्त के तजुर्बों, अपनी उमंगों और अपनी ख्वाहिशों की बुनियाद पर आने वाले कल के रंगीन ख्वाब बुनता है। लेकिन होनी एक अजीब ही चीज़ है। होनी आने वाले अगले पल की जरा भी आहट नहीं देती, और जब कुछ ऐसा वैसा हो जाता है तो कहते हैं होनी अटल है। कौन जानता था कि 17 जून को होनी क्या रंग दिखाने वाली है। मिसेस शर्मा बाहरी कमरे में पूरी रफ्तार से चल रहे पंखे के नीचे आराम कर रही थीं कि अचानक उन्हें बाहर से साइकिल की घंटी की आवाज सुनाई दी।
2: अरे उषा, विनय, अरे किशन, अरे देखो ना बाहर कौन है। अरे देखो ना बाहर जाके कि कौन है। तरकारी भाजी वाला हो तो कह देना कि नहीं चाहिए। अरे हाय, लगता है चले। अरे रुक भैया रुक, मैं अब आती हूँ, ऐसी भी क्या उतार रही हूँ। आप कैसे घर चले आए इस वक्त? तब तो ठीक है ना आप? अरे आप ठीक ठाक है ना? क्या हो गया, आप कुछ बोलते क्यों नहीं? हे भगवान, आप बिल्कुल, क्या कुछ हुआ है? बैठे बैठे मैं पानी लाती हूँ।
1: नहीं।
2: अरे नहीं, नहीं, इतनी गर्मी है, प्यास लगी होगी, जरूर आपकी तबीयत खराब है। पता ही है ना, क्या बुखार है, कहीं लू तो नहीं लग गई?
1: नहीं नहीं।
2: तो फिर क्या हुआ है बताइए ना, बताते क्यों नहीं? आपको मेरे सिर की कसम, मेरा तो दिल थक थक कर रहा है। ओ, आज सुबह सुबह मेरी आंख भी फड़क रही थी। बताइए ना क्या हुआ है?
1: क्या बताऊं?
2: अच्छा अच्छा ये तो बता दीजिए कि तबीयत तो खराब नहीं है ना?
1: नहीं।
2: तो फिर और क्या बात है, नौकरी तो आपकी पक्की है, उसका तो कोई भय नहीं, फिर क्या हुआ है?
1: बहुत बुरा हुआ है, बहुत बुरा, बहुत बड़ा अन्याय, महान अनर्थ।
2: क्या?
1: ट्रांसफर।
2: ट्रांसफर? आपकी?
1: हाँ। हाय रे। आज सुबह ही 10:29 पर ये मनहूस खबर मुझे मिली।
2: हाय रे भगवान, ये कैसा अनर्थ हो गया?
1: क्या बताऊँ लाजवंती? खबर मिलते ही मेरे पांव तले से वो जमीन खिसक गई, जहाँ पिछले 25 से अपने जूते खिस रहा हूँ। अब क्या होगा लाजवंती?
2: किस्मत फूट गई, हमारी किस्मत फूट गई। हाय हाय, कैसा दुर्भाग्य है हमारा। हाय हाय राम, हाय, अब हम कहाँ जाएंगे, कहाँ जाएंगे, कहाँ?
1: आगरा।
3: हाय, क्या हो गया लाजवंती बहन?
4: पहले मैंने भाई साहब को घर लौटते देखा, फिर तुम्हारे रोने की आवाज आई, तो मैंने सुशीला बहन को भी बुला लिया।
3: हाय, कौन था बहन?
4: कोई आपका सगा था या भाई साहब का?
3: दिल्ली में था कि बाहर?
2: नहीं बहन, ये बात नहीं, जीना मरना तो भगवान के हाथ है। आए, हमारे साथ बहुत अनर्थ हो गया।
3: हौसला रखो बहन, हौसला रखो।
4: अरे बच्चे तो ठीक ठाक हैं।
2: आए भगवान उन्हें लंबी आयु दे, सब ठीक है।
3: बहन फिर हुआ क्या?
2: अरे किस्मत फूट गई हमारी, तो किस्मत।
4: भाई साहब की नौकरी?
2: अरे पक्की नौकरी है उनकी, सरकारी पक्की नौकरी। पर क्या बताऊं, आए क्या बताऊं, भगवान ने कैसा अनर्थ कर दिया।
4: अनर्थ?
2: अनर्थ, आए इनकी ट्रांसफर हो गई।
3: हाय राम,
4: सबर करो बहन, धीरज रखो।
1: लाजवंती, हौसला रखो।
2: तुम्हें मालूम था कि एक दिन ये आस पड़ोस या घर छोड़कर जाना पड़ेगा।
3: बस धीरज रखो बहन, कोई ना कोई उपाय अवश्य निकलेगा।
2: उपाय निकलेगा? अरे क्या उपाय निकलेगा, हमारा तो घर बार ही उजड़ गया।
3: बस बस बहन, उठो, देखो पानी वानी पियो। भाई साहब कितनी गर्मी में बाहर से आए हैं, मुंह हाथ धो और इन्हें जलपान करा, मन को शांत रखो बहन, और इसका कोई उपाय सोचो।
2: ठीक तो कहती हो बहन।
4: तुम कोई फिक्र न करो मिसेस शर्मा, थोड़ी देर आराम कर लो, वो जलपान मैं भिजवाई देती
2: हूँ। नहीं बहन, नहीं नहीं, आप क्यों कष्ट करो।
4: आए कष्ट कैसा, दुख सुख में पड़ोसी पड़ोसी के काम नहीं आएगा तो कौन आएगा। आओ सुशीला बहन।
3: हौसला रखो बहन, भगवान सब ठीक करेगा।
4: अभी मुन्नी के हाथ पानी वानी भिजवाती हूँ।
1: लाजवंती, क्या सोच रही हो लाजवंती?
2: आपने उसका क्या बिगाड़ा था जिसने आपको यूं उजाड़ा है? कौन है वो, जरा जरा उनसे पूछे तो।
1: न जाने कौन है।
2: किस कमबख्त ने दिया है ये ऑर्डर?

0: अरे ये ऑर्डर तो ऊपर से आते हैं, न मालूम किस अफसर के दस्तखत हैं। फिर जिसके दस्तखत होते हैं उसको भी ऑर्डर ऊपर से आते हैं। दरअसल ऑर्डर करने वाला कौन है क्या मालूम।
1: जब आप उसे नहीं जानते, वो आपको नहीं जानता, तो उस अनजाने कलमुहे ने किस चरम का बैर निकाला है हमारे साथ?
0: किसने क्या बैर निकाला है लाजवंती, ये तो अपने ही पिछले कर्मों का फल है।
2: अम्मा खाना लगा दो तो जरा जल्दी से, मुझे फौरन वापस जाना है।
3: पिताजी आप
0: कृष्ण तुम
3: इस वक्त यहाँ?
0: इस वक्त यहाँ?
3: आपकी तबीयत तो ठीक है ना पिताजी? अम्मा आप आपकी आंखें क्यों सुर्ख हो रही हैं? बात क्या है?
1: क्या बताऊँ बेटे,
3: हुआ क्या है, कुछ बताइए तो।
0: आज सुबह 10:29 पर मुझे ये मनहूस खबर मिली है कि मेरा ट्रांसफर हो गया है।
3: ओह, तो उन्होंने वार कर ही डाला।
0: किसने, किस पर?
3: जालिम हुक्मरानों ने, अपने गुलामों पर।
0: क्या बक रहे हो तुम, कैसे जालिम हुक्मरान, कहाँ के गुलाम? अरे हम एक स्वतंत्र देश के स्वतंत्र नागरिक हैं।
3: ये सब धोखा है, आप अपने आप को स्वतंत्र देश का स्वतंत्र नागरिक समझते हैं?
0: बेशक।
3: तो फिर आपका ट्रांसफर करने से पहले आपसे पूछा क्यों नहीं गया? इकबाल ने तो अपने शेर में भी कहा है कि खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी मर्जी क्या है।
0: रजा, रजा।
3: अब हाँ हाँ वही वही मतलब है, जब खुदा को भी बंदे की मर्जी जाने बिना ट्रांसफर करने का हक नहीं है, तो फिर उन्होंने आपकी ट्रांसफर कैसे कर दी, क्यों कर दी? क्या इसलिए कि आप कमजोर हैं, हालात के गुलाम हैं? आपने अपनी जिंदगी के बेहतरीन 25 उनकी खदमत गुजारी में कुर्बान कर डाले, और बदले में मौका मिलते ही उन्होंने आपको दूध से मक्खी की तरह निकाल कर बाहर कर डाला। क्या आप अब भी इनकलाब का नारा नहीं लगाएंगे, इस जबरदस्त नाइंसाफ के खिलाफ आवाज नहीं उठाएंगे? मेरे साथ मिलकर बोलिए, इनकलाब, इनकलाब।
0: तुम नहीं जानते मैं एक गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ, ये गवर्नमेंट क्वार्टर्स हैं। इस किस्म के नारे लगाना सर्विस कंडक्ट रूल्स के खिलाफ। जरा सोचो ये क्या बक रहे हो तुम, जरा सोचो।
3: आप नहीं समझेंगे पिताजी, आप मुझे सोचने के लिए कह रहे हैं, जबकि सोचने की जरूरत आपको है। जानते हैं क्यों? क्योंकि आपने तमाम जिंदगी काम किया है, कभी सोचा नहीं। और मैंने कभी काम को हाथ नहीं लगाया, सिर्फ सोचा है।
0: दो वक्त का खाना तुम्हारा बाप जो जुटा रहा है।
3: वो खाना जो 25 तक एक बहुत बड़ी मशीन के एक मामूली पुर्जे की तरह काम करने के बदले मालिक आपको देते आ रहे हैं।
0: अरे कौन से मालिक, किसके मालिक, दिमाग चल गया तुम्हारा?
3: चल रहा है दिमाग उन साम्राज्य ताकतों का जिनके हाथ बहुत लंबे हैं, बहुत लंबे, हजारों मील, एज द क्रो फ्लाइज, और उससे भी लंबे अगर भाई सी आए तो। हो सकता है पिताजी उनको एक मामूली से पुर्जे यानी आपकी सीट की अहमियत का अंदाजा लग चुका, या वो यहां अपने किसी लोकल एजेंट को बिठाना चाहते हो। ये ट्रांसफर उन्हीं विदेशी ताकतों की एक गहरी साजिश है, दुनिया के बड़े बड़े सरमायादार, ये इंडस्ट्रियलिस्ट।
0: बेवकूफ पागल गधे, तुझे शर्म नहीं आती ऐसे कठिन समय में ऐसी ऊट पटांग बेसिर पैर की हाके जा रहा?
1: जब से इसकी नौकरी छूटी है रोज ऐसी ही बहकी बहकी बातें करता है।
3: नौकरी छूटी नहीं, छोड़ी है मैंने, लात मार दी है गुलामी पर, गुलामी की चिकनी चुपड़ी से आजादी की रूखी सूखी अच्छी,
0: और बेकारी के फाके उससे भी अच्छे। जी चाहता ऐसी निकम्मी औलाद को लात मार के घर से बाहर निकाल।
1: अरे हाय, अब घर भी कहाँ रह गया है। मैं कहती हूँ जी कुछ तो सोचो, ऐसी विपता सिर पर पड़ी है और बाप बेटा आप आपस में झगड़ रहे हैं। आप मिल बैठ के कुछ सोचिए कि अब करना क्या है।
3: आई एम सॉरी डैडी, मुझे क्षमा कर दीजिए, अचानक ऐसी बुरी खबर सुनकर मैं जोश में आ गया था। मेरी पार्टी की ट्रेनिंग ही कुछ ऐसी है।
0: अब निखट्टू बेकारों ने अपनी कोई पार्टी भी बना ली है।
1: ओहो, फिर वही। जाओ जाओ कृष्ण, तुम अपने कमरे में जाओ, जरा शांत होकर बैठिए, जरा सोचिए तो सही कि करना क्या है।
0: करना क्या है, क्या हो सकता है, कोनी बड़ी बलवान है लाजो और इंसान बहुत कमजोर।
3: लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि इंसान हाथ पर हाथ धरे बैठा रहे, आपको कुछ करना चाहिए।
1: और क्या, कुछ ना कुछ कोशिश तो करनी ही चाहिए।
0: अरे तुम्हारा क्या मतलब है कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ? आज सुबह ही दफ्तर के तमाम बाबुओं ने फैसला किया है।
3: कल से स्ट्राइक?
0: अरे नहीं बेवकूफ, कल 11 एक मीटिंग होगी जिसमें यह फैसला किया जाएगा कि मुझे क्या एक्शन लेना चाहिए। मैं सोचता हूँ जो कुछ भी करना है कल की मीटिंग के बाद किया जाए।
4: उसी रोज यानी 17 जून की शाम, वक्त लगभग 5:30 और 6 के बीच,

0: से घर लौटी है। वक्त से पहले अपने पिता को घर पर देखकर अचानक ही हड़बड़ा उठी और हड़बड़ाहट में ये भी भूल गई कि उसने बिल्कुल ऐसे वस्त्र पहन रखे हैं जो मिस्टर शर्मा के कथनानुसार
1: शरीफ खानदान के बेटे बेटियों का पहरावा नहीं है, ये पहरावा कम है दिखावा ज्यादा।
0: बाहरी कमरे में उषा शर्मा की एंट्री के वक्त कुछ तो रोशनी फीकी सी थी, कुछ मिस्टर शर्मा की तबीयत निढाल, शायद आंखें भी अधमुंदी सी थीं। शर्मा जी को यकीन है कि सब कुछ बहुत साफ नहीं था, इसलिए उषा की आवाज सुनते ही
2: मामी मामी पिताजी आप बाप रे
3: कौन
2: मैं कोई नहीं
3: कौन लाजवंती अरे उषा ही है क्या
2: उषा हाँ, नहीं
3: तो कौन घुसा है अभी घर में
2: उषा
3: वही तो मैं पूछ रहा हूँ कि इस घर में हो क्या रहा है ऐसे कपड़े पहनने की इजाजत किसने दी उसे
2: ओ, ओ, किसे कोस रहे हैं
3: मैं पूछता हूँ ये कैसा पहरावा है
2: ओ, ओ, पूरी बात तो सुन लिया करो मैंने कहा उषा की कोई सहेली थी उषा तो कभी की आई हुई है
4: बुलाओ उसे
2: अरे इधर क्या आएगी बेचारी घर आते ही जब से मनहूस खबर सुनी है बेचारी रोए जा रही है
4: ओह हे भगवान मेरा नहीं तो इन नन्हे नन्हे मासूम बच्चे का ही कुछ ख्याल किया होता
3: विनय लौट आया कॉलेज से
2: हाँ वो भी बहुत परेशान था अपने किसी दोस्त को मिलने गया था आता ही होगा
3: सूरज ढलने के बाद बच्चों का घर से बाहर रहना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है
2: आप सूरज ढलने की बात करते हो हमारे लिए तो अब सूरज हमेशा हमेशा के लिए डूब ही गया है
4: हौसला रखो लाजवंती कुछ न कुछ उपाय अवश्य निकलेगा अवश्य निकलेगा
3: विनय
5: जी पिताजी
3: कॉलेज से लौटकर तुम्हें घर पर ही रहना चाहिए
5: इफ यू डोंट माइंड आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ
3: कैसा सवाल
5: इतने सालों से आप दफ्तर में काम कर रहे हैं और आपके आसपास क्या हो रहा है इसकी आपको जरा भी खबर नहीं रहती
3: विनय
5: आपकी ट्रांसफर होने वाली है इसकी खबर तक न मिली आपको
3: खबर आज ही आई है
5: आज ऑर्डर आए हैं आप जरा भी होशियारी से काम लेते तो इसकी खबर आपको पहले हो सकती थी
3: तुम्हारा मतलब क्या है
5: खबर पहले मिल जाती तो ऑर्डर रुक सकते थे
3: ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर ऊपर से आते हैं ये कोई मेरे हाथ की बात है
5: पिताजी आपको ये तो सोचना चाहिए था कि आपकी ट्रांसफर से हमारी जिंदगी हमारे एजुकेशन हमारे करियर का क्या बनेगा
3: तो ट्रांसफर क्या मैं खुद करवा रहा हूँ
5: लेकिन ट्रांसफर ना हो इसकी कोशिश तो कर सकते थे आप और ट्रांसफर हुई भी थी तो किसी अच्छी जगह हो सकती थी बम्बई लंदन न्यूयॉर्क कहीं करवा लेते तो भी इज्जत रह जाती अब क्लास में किसी को क्या मुंह दिखाऊंगा कि मेरे डैडी की ट्रांसफर आगरे हुई है सब कहेंगे आगरे के पागलखाने में जा रहे हैं
3: तू क्या बक रहा है बेवकूफ कहीं का
5: डोंट माइंड पिताजी एक बात मैं साफ बता देता हूँ मैं दिल्ली छोड़कर नहीं जा सकता
3: तुम दिल्ली छोड़कर नहीं जा सकते
5: कैसे जा सकता हूँ यहाँ मेरा करियर है एक अपना सोशल सर्कल है
3: तुम्हारा सोशल सर्कल
5: मैं आपकी तरह जिंदगी भर दफ्तर में क्लर्क ही नहीं कर सकता अगर आप ट्रांसफर नहीं रुकवा सकते तो आप लोग जाइए मैं यहाँ हॉस्टल में रह लूंगा
3: क्या तो यहाँ हॉस्टल में रह लेगा और खर्चा खर्चा कौन देगा
5: ऑफ कोर्स आपको देना होगा
3: मैं इस तनख्वाह में तुम्हें हॉस्टल का खर्चा दे सकता हूँ
5: तो ना सही मैं कुछ छोटा मोटा काम कर लूंगा
3: और मेरे इस घर बार के साथ इसके साथ नहीं रहोगे
5: मैं घर के साथ चिपका रहूं या अपना फ्यूचर देखूं आज आप ये ट्रांसफर नहीं रुकवा सकते आगरे चले जाएंगे फिर वहां से निकाल वो आपको वेलू ट्रांसफर कर देंगे वहां से गाजियाबाद कर देंगे वहां से धनबाद और धनबाद से फिरोजाबाद माल गाड़ी की तरह आपको यहाँ से वहां वहां से यहाँ शंटिंग करते फिरेंगे हम साथ साथ अपनी जिंदगी कहाँ बर्बाद करते रहेंगे पिताजी
3: मेरे साथ अपने परिवार के साथ रहने में तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो रही है
4: हे भगवान मैं ये क्या सुन रहा हूँ मेरी औलाद मुझे इस तरह भले मैं ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकता दूर हो जा मेरी नजरों से
2: विनय अपने पिताजी के सामने जबान खोलते तुझे शर्म आनी चाहिए
5: नहीं अम्मा मैंने ये सब कुछ मैं क्या बताऊं अम्मा मैं क्या बताऊं मैं दिल्ली छोड़कर नहीं जाना चाहता मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा
3: निकल जा मेरे घर से चला जा यहाँ से जहाँ तुझे रहना रह ले बाप का घर छोड़कर दिल्ली में जा रह सकता है रह ले
2: ओहो आप क्यों बच्चों पर क्रोध करते हैं जिसे बाप का घर कह रहे हो वो अब कितने दिन और हमारा है आए राम किसे पता था कि एक दिन यूं बैठे बिठा है सारा घर बार उजड़ जाएगा
5: आई एम सॉरी पिताजी ट्रांसफर की बात सुनकर मुझे

0: पिछले 25 वर्षों में पहली बार दफ्तर से भाग कर आया हूँ और सुबह से इस खटिया पर पड़ा हूँ।
1: लेकिन पिताजी, खटिया पर पड़े रहने से क्या होगा, कुछ कीजिए ना।
0: हाँ, कर रहा हूँ, कर रहा हूँ। कल

0: वह एक मीटिंग होने वाली है, बस उसके बाद ही कोई एक्शन लूंगा।
1: अगले रोज यानी 18 जून सुबह 11 बजे मिस्टर शर्मा के ऑफिस में।
2: भाई साहब, आजी भाई साहब,
3: जी जी,
2: चालान देखकर जरा इस पर दस्तखत कर दीजिए, कैश जमा करवाना है।
3: लंच के बाद आना।
2: लंच के बाद आपका कैश काउंटर बंद हो जाता है
3: तो जनाब? फिर सुबह जरा जल्दी आना था।
2: लेकिन जनाब वक्त तो अभी भी है।
3: कहाँ है वक्त, 11 बज रहे हैं, स्टाफ की मीटिंग है।
4: अरे ललित बाबू, और 11 बज गए, चलो भाई बड़े बाबू जी की मीटिंग का वक्त हो गया है।
3: चलो।
2: अरे भाई साहब, बस एक मिनट की बात थी, एक नजर देख जाते, बड़ी मेहरबानी होती आपकी। बात यह है, आज पैसा जमा कराना बहुत जरूरी था।
3: कमाल है साहब, यहाँ बड़े बाबू की जिंदगी मौत का सवाल बना हुआ है और आपको पैसा जमा करवाने की पड़ी है। आपके सीने में इंसान का दिल है या पत्थर?
4: ओए चलो ना ललित बाबू, ये पब्लिक तो हमको अपना घरेलू नौकर समझती
3: है। चलो चलो चलो चलो,
5: आओ आओ ललित बाबू, आओ इधर आओ, आओ भाई आओ।
4: नमस्कार बड़े बाबू जी।
3: अरे बड़े बाबू, आप तो बस एक ही दिन में इतने कमजोर लग रहे हैं जैसे महीने भर की बीमारी से उठे हैं।
0: नहीं नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है।
5: अरे भैया, ट्रांसफर की चोट लकवे से कम नहीं होती, अचानक आती है और इंसान को अधमुआ करके चली जाती है।
4: फिर भी मैं तो यही कहूंगा कि बड़े बाबू की बर्दाश्त का जवाब नहीं।
3: सो तो है, पर अब सोचना ये है कि इस ट्रांसफर को रुकवाने के लिए क्या एक्शन लिया जाए।
5: कुछ ना कुछ एक्शन तो लिए जाना चाहिए। रामलाल, जरा कैंटीन से जरा चाय तो लिया।
6: इतने चाय?
5: यही 4-5, और 4-5 प्लेट बढ़ेगी।
6: और पैसे?
0: ये ले, मैं देता हूँ।
3: अरे अरे, ये क्या कर रहे हैं बड़े बाबू, ये नहीं हो सकता।
4: नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। नहीं, नहीं, नहीं,
0: एक ही बात है भैया, एक ही बात है। एक दिन में क्या मैं इतना पराया हो गया?
3: नहीं, नहीं, नहीं, नहीं,
4: चलो चलो, जैसे बड़े बाबू जी कहते हैं कर लो।
0: ले ले, ये ले 10 का नोट और लपक के ले आ जा।
5: मेरी राय में तो बड़े बाबू, सबसे पहले आपको करमाकर साहब से मिल लेना चाहिए। क्यों भाई?
4: हाँ बिल्कुल,
0: मगर वो क्या कर सकता है?
4: बड़े बाबू जी, आप तो जानते हैं किसी भी गवर्नमेंट सर्वेंट को प्रोसीजर में कच्चा नहीं होना चाहिए। देखो ना, वो है आपका इमीडिएट अफसर, उसको बाईपास करके सीधा ऊपर जाना अगेंस्ट द प्रोसीजर हो जाएगा। क्यों भाइयों?
3: सही बात,
4: सही है,
3: सही बात।
0: अच्छा तो फिर पहले मैं करमाकर साहब से ही मिल लेता हूँ, और क्या।
5: और फिर आपने तो कितना कुछ किया है करमाकर साहब के लिए।
0: हाँ सो तो है,
3: बस एक नोट लिख दे वो तो रुक गई ट्रांसफर। क्यों भाई?
4: बिल्कुल
5: सही बात,
3: बिल्कुल सही
0: बात।
5: आज ही मिल लीजिए,
0: पहले अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी।
5: बिल्कुल ही, आपको अपॉइंटमेंट लेने की क्या जरूरत? अपॉइंटमेंट ली तो मामला भाप, अगला पहले से ही कोई एक्सक्यूज सोच लेगा, बस सीधा जा पहुंचे उसके पास। क्यों भाई?
3: बिल्कुल ठीक बात है।
0: तो ठीक है, मैं आज ही करमाकर साहब से मिल लेता हूँ।
1: मीटिंग से उठना मिस्टर शर्मा का, और उसी रोज यानी 18 जून को ही जाना करमाकर साहब के पास।
7: मे आई कम इन सर?
8: आओ आओ मिस्टर शर्मा, कम इन कम इन, आओ बैठो। कैसे आया?
0: सर आपसे थोड़ा वो एक पर्सनल काम था।
8: हाँ हाँ बोलो।
0: सर वो बात ये थी कि
1: आपने तो इतना कुछ किया करमाकर
0: साहब के लिए। सर आपको याद होगा, जब आप दिल्ली आए थे तो हाँ, आपको स्टेशन पर रिसीव करने मैं ही आया था।
8: हाँ याद है।
0: जब आपको सरकारी क्वार्टर न मिला था तो हाँ, गुप्ता जी के क्वार्टर का आधा कमरा मैंने ही दिलवाया था। सर
8: याद है बरोबर।
0: पहले 2-3 महीने आपकी सारी फाइलें मैं ही अपनी बाइसिकल पर आपके घर पहुंचाता रहा हूँ।
8: बरोबर।
0: और एक दिन वो भीनी भीनी सुगंध वाला रुमाल जो आप दफ्तर में भूल गए थे, जिस पर अंग्रेजी का शब्द।
8: बरोबर बरोबर मिस्टर शर्मा, हमको सब कुछ याद है। You have done a lot for me.
0: आपको सब कुछ याद है?
8: Of course.
0: अगर सचमुच अपने सारे करियर में पूरे फर्ज से ड्यूटी मैंने निभाई है, सच्चे दिल से आपकी सेवा की है, तो बस एक काम कर दीजिए मेरा।
8: बोलो बोलो, क्या काम है?
0: सर आपको तो मालूम है मेरे ट्रांसफर ऑर्डर्स आ गए हैं।
8: मालूम जरूर है, पर उसमें हमारा कोई हाथ नहीं है। बाय गॉड, ये ऑर्डर हमारा नहीं है।
0: ये मैं जानता हूँ सर, लेकिन अगर आप चाहें तो ये ट्रांसफर रुकवा सकते हैं।
8: क्या मैं रुकवा सकता हूँ?
0: बेशक सर, बेशक आप रुकवा सकते हैं।
8: लेकिन ऑर्डर तो बहुत ऊपर और ऊपर से आया है।
0: कहीं से भी आया हो सर, ये ट्रांसफर रुकवा दीजिए। सर मैं घर से बेघर हो जाऊंगा, मैं बर्बाद हो जाऊंगा, मेरा घर बच्चे तबाह हो जाएंगे। सर मैं
8: ये क्या कर रहे हैं मिस्टर शर्मा?
0: सर मैं आपके पाँव पकड़ता हूँ।
8: अच्छा अच्छा अच्छा, अगर ये बात है तो हम पूरी कोशिश करेंगे। एक बात बोलो मिस्टर शर्मा, आप ट्रांसफर रुकवाना क्यों चाहते हैं?
0: आप क्या पूछ रहे हैं सर?
8: क्यों
0: हम पिछले सैकड़ों सालों से दिल्ली में रहते

0: अपने देश शोलापुर से कितनी दूर आकर सर्विस कर रहे हैं?
1: आपकी नाल नगड़ी होगी ना सर वहाँ पर। फिर आप जवान थे, अकेले थे, और वो खुशबू वाला रुमाल।
0: बरोबर, तुम ठीक कहते हो मिस्टर शर्मा, पर ये नाल गड़ी वाली बात समझ नहीं आई।
1: नाल सर, वो नाल बच्चे की पैदाइश के वक्त होती है। नाल क्या बोलते हैं सर उसको? हाँ, बिलिकल कॉर्ड।
0: अच्छा, कभी देखा नहीं।
1: सर आपकी शादी कहाँ हुई है? बच्चा तो बाद की चीज है ना सर। और फिर अम्बिलिकल कॉर्ड यानी नाल जमीन में गाड़ दी जाती है सर, जमीन में।
0: ओ आई सी।
1: मेरी माँ ने भी धरती में गाड़ दी थी सर।
0: कहाँ?
1: वो घर के आंगन में सर।
0: लोधी रोड के क्वार्टर में?
1: नो सर, पुरानी दिल्ली में।
0: ओ, वो तो 10-12 मील होगा।
1: यस सर।
0: तो नालगढ़ी से कितनी दूर तक जा सकते हैं?
1: ओ, आप समझे नहीं, है तो अपनी धरती ना सर, सेम सिटी।
0: पुरानी दिल्ली से नई दिल्ली?
1: है तो दिल्ली ना।
0: यस, यू आर राइट।
1: अब आप समझे ये बात, आप ही समझ सकते थे इसको, ऊपर वाले नहीं सर। बस सर, अब आप सारी बात समझ गए ना, तो सर ये ट्रांसफर रुकवा दीजिए।
0: हम रुकवा सकते हैं?
1: यस सर, आप रुकवा सकते हैं।
0: ओके, हम रुकवा देंगे।
1: थैंक यू सर, थैंक यू।
0: नो, व्हाई थैंक मी, इट इज माय ड्यूटी।
1: थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, मैं अब चलता हूँ।
0: ओके,
1: थैंक यू सर, थैंक यू।
0: मिस्टर शर्मा।
1: यस सर।
0: आपने ये तो बताया ही नहीं कि ट्रांसफर रोकने के लिए हमको करना क्या होगा।
1: बस सर, आप एक डीओ लिख दीजिए, ये स्पेशल केस है, ये ट्रांसफर रोक दी जाए।
0: इज दैट ऑल?
1: यस सर।
0: ओके, हम लिख देंगे।
1: थैंक यू सर, थैंक यू। अच्छा, अब मैं चलता हूँ सर।
0: अच्छा, बट लिसन।
1: यस सर।
0: ये डीओ लिखकर भेजने से ऊपर वाले ये तो ना समझेंगे कि मेरा कोई इंटरेस्ट है। यू नो भाई, ये ऑफिसर लोग बहुत सस्पिशियस होते हैं।
1: सर आप ये लिखिए ना कि काम बहुत है, शर्मा बहुत पुराना आदमी है, इसको रिलीव नहीं किया जा सकता।
0: हाँ हाँ, ये ठीक है।
1: थैंक यू सर।
0: अच्छा अच्छा,
1: थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच।
0: पर मिस्टर शर्मा।
1: यस सर।
0: वो ये भी तो कह सकते हैं कि ट्रांसफर में एक आदमी लेकर बदले में दूसरा आदमी दे रहे हैं, भाई स्टाफ स्ट्रेंथ वही रहेगी ना।
1: सर आप जरा स्ट्रॉन्ग डीओ भेजिए ना।
0: सुनो, नालगढ़ी मेंशन कर दें।
1: नो सर, वो उनकी समझ में नहीं आएगा सर।
0: मिस्टर शर्मा।
1: यस सर।
0: आप ऐसा क्यों नहीं करते कि अपना रिप्रेजेंटेशन बनाकर मुझे दे दें, मैं उसे थ्रू प्रॉपर चैनल फॉरवर्ड कर दूंगा।
1: वो तो सर।
0: कोई बात नहीं, हम फौरन पास ऑन कर देगा। भाई तुम तो जानते ही हो, हमारी पोजीशन बस एक पोस्ट ऑफिस की है। जैसे ऊपर का ऑर्डर हमने आपको पास ऑन कर दिया, आपका रिप्रेजेंटेशन ऊपर फॉरवर्ड कर देगा। डोंट वरी, हम पूरी कोशिश करेगा।
1: ओके सर।
0: ऑल द बेस्ट।
1: थैंक यू सर,
0: ऑल द बेस्ट।
1: थैंक यू।
2: प्लास्टिक की घास। श्रोताओं, आज आपने सुना इस नाटक का पहला भाग। लेखक सुरेंद्र गुलाटी, निर्देशक दीनानाथ। आपको बता दें, इस नाटक का दूसरा और अंतिम भाग आप सुन सकेंगे कल नाट्य तरंग कार्यक्रम में। अब आज का नाट्य तरंग कार्यक्रम समाप्त होता है।
3: नमस्कार, ಇದು ವಿವಿಧ ಭಾರತಿ ಆಕಾಶವಾಣಿ ಕನ್ನಡ 102.9 ಎಫ್ಎಂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪರಿಮಳ ಕೇಳುಗರೆ. ಇವತ್ತಿನ ಪರಿಮಳ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಸಂಬಂಧಿತ ಯಾವ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋ ಕುತೂಹಲ ನಿಮಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಖಂಡಿತ, ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋಣ. ಈಗ ಒಂದು ಹಾಡಿನೊಂದಿಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆರಂಭ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರೀತಿಯ ಎಲ್ಲ ಕೆಳಗರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಅನುಪಮ ಕೆಎನ್. ಇದು ಪರಿಮಳ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ.